0: Today on Schedule It is Tratak, an excellent method for improving and balancing our emotional and mental function. Swamiji has found the title of a yogi always offers something that can help.
1: तो इस प्रकार की और साथ ही साथ वो वेजिटेटिव नर्व सिस्टम्स जो है नाड़ियों का यहाँ खुल जाना होगा, सेंटर जो केंद्र हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते
0: हैं एंड सत्संग
1: और उस क्लोज इट इज ए क्लोज ग्रंथि है या मांसपेशी है
0: विद Spontaneity is a precious Hindu quality. This poet composed an ode to Swamiji on the spot. Gigantic soul, who all his life has emanated the beauty of love and unity between man and God. Full celebration. The guest of honor was the chief minister. Lord has been a guest at the ashram on several occasions and wanted to see how work was progressing. A photo biography of Guruji's life was solemn.
2: आनंद जी महाराज साहब तो आज हमारे बीच में नहीं है क्योंकि वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, बताया गया मैं लंबे समय तक कैसे उन्होंने वो काम किए जिसे समाज को, देश को, दुनिया को संदेश देते गए. ये सौभाग्य है पाली जिले का.
3: ऑफ अवर फॉरेन फ्रेंड्स आर ऑल्सो हियर. आई वुड लाइक टू एक्नोलेज देयर डेडिकेशन टू दिस इंस्टीट्यूशन.
1: तो बाबूजी मन से यहाँ है, तन से वहाँ. नशा पत्ता छोड़ो, जाति पाति का भेदभाव छोड़ो, मानव का भी कल्याण हो. बोल श्री दीप नारायण भगवान की.
0: To an end. The heart of India is an ashram. An ashram is the home of the soul.
4: God is endless. And his glory is everything.

जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। Anybody wants to sing?

बोले श्री आकुरी समारी की जय। देवेश्वर महादेव की जय। श्री दीपनारायण भगवान की जय। श्री स्वामी माता कृष्ण भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडल स्वामी महेश्वर जी गुरुदेव की जय।

ओम बोले सिद्धिप नारायण भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

ॐ कारबिंदु संयुक्तम नित्यदायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो नमः।

हथेलियों को अच्छे से मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डी जी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है

भाई हैं, ये जो पृथ्वी है, माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे कि अभी गुरुजी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती है, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, क्या ना। जब मनुष्य मरने जाता है तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे हमारे जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मै वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनुपश्यत। सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा है। कहते हैं ये मूक प्राणी है, स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है कि इनको ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो। यही आज हमें पूज्य स्वामी जो हमें प्रेरणा देते हैं, पूज्य गुरुदेव महादानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की। तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है। मत वो शांति सेवा से मिलती है, तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाया हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा ना, ईशावास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृदह कस्य स्विदनम। ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कहती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। का ना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न पावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो तुम्हारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शांति।

0: क्या शुभ नाम है आपका? आप आइए, आपको एक ड्यूटी देते हैं। अपने जितने भी भारतीय वहाँ है वहाँ से कुछ लान इकट्ठा करवा करके इस कार्य के लिए भेजना है। जितना भी हो आप तो अभी तो घोषणा नहीं कर सकते, कोशिश करेंगे हम भी वहाँ भिजवाएंगे आपने।
1: ठीक है, सो यू वांट मी टू अपील टू माय ओके
0: इन अमेरिका
1: ओके
0: टू योगा एंड डेली लाइफ फाउंडेशन इन ऑस्ट्रिया।
1: ओके, योगा एंड
0: डेली लाइफ फाउंडेशन ऑस्ट्रिया और इंडिया।
1: ओके,
0: इंडिया योगा एंड डेली लाइफ
1: योगा इन डेली लाइफ
0: फाउंडेशन
1: इन ऑस्ट्रिया।
0: नो, न्यू दिल्ली।
1: फ्रेंड्स, स्वामी जी, डीजी, पुष्पा जी, आई एम नो स्पीकर। आई हैव कम टू जयपुर टू एक्चुअली गेट ट्रीटमेंट फॉर एलर्जीज। ऑल माय लाइफ आई हैव सफर्ड दिस एंड द ओनली रिकोर्स इज योगा। इट इज सैड व्हेन अ कैलामिटी हैपन्स। Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to yoga in daily life. Yoga in Daily Life Foundation. It has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me, and we'll find a way to get the money, and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
0: In rupees?
1: Yes.
0: Thank you. Ke dollar?
1: Did I say?
0: Among us, there is sitting one Brahma Rishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti, Vishwa Shanti, नेपाल के लिए। तो ब्रह्म ऋषि जी आइए आप, एंड प्लीज सिंग वन भजन। दर्द दुख दूर हो जाए, दया हो जाए। मिश्री लाल जी, ब्रह्म ऋषि, पी थावला, नागौर कैजमेर है,
2: नागौर। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी सज्जनों, 84 लाख जून के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जून बताइए, वो मानव तन है। क्या बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बनेंगे, और वो भी भारत खंड के अंदर बनेंगे। 84 लाख जोड़ में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख कीट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु, और 4 लाख मान का जोड़ है। 4 लाख मान का जोड़ के अंदर कौन मनुष्य है

ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे, बिना सिंह पूछ के जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, शीलता नहीं है, सुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना चलना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती माधवानंद जी महाराज, सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वरानंद जी महाराज, ऐसी दिव्य आत्माएं हम ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर। क्या जहां दया है कबीरा हम आए संसार में, कबीरा हम आए संसार में, जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है। ये जीव आता है ना महाराज संसार के अंदर, परिवार कुटुंब में सब में कुछ ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। तो आज भी जो है महात्मानंद जी महाराज के, मैं उनके सानिध्य में मेरे को मैं ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है, और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनकी शरण में आया हूं। क्या तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता है, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो माधवानंद जी महाराज जो है ना मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 80-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि मैं महाराज जी श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में।

करे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहां जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहाँ बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है।

करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, बेखरी मध्यमा पसंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी महाराज। विनय के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है आगे ऐसा संकट इस पृथ्वी पर नहीं आवे क्या। जब परमात्मा की कृपा होगी जो

नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।

श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण।

0: भगवान
1: की जय।
0: देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: माधव कृष्ण भगवान
1: की जय।
0: सत्य सनातन धर्म
1: की जय।

0: विद्दु and when is it thing everything is have done then how that
1: sve je prikazano.
0: Ta ta ta ga di di da da di nam tak
1: ta Shiva ko klesh da
0: gidi gidi blag di kada ka gidi gidi grag da du da di ka ba dai ta re ge ge yi de एक पैर के अंदर में कितना इतना लगा करके दो है निंद का और ये जो इतना जो सा था ना इसको तो है सहम सहशस्त्र
1: वो सहस्रार चक्र

0: राधे भगवान श्री नरेन महाप्रभु जी
1: की जय हो।
0: श्री सियालकपुरी जी महादेवा की जय। श्री सिद्धपुरी जी महादेवा की जय। श्री हिंदू धर्म सम्राट श्री परमहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय।
2: सत्य सनातन
0: धर्म की जय।

0: Sridipnaran Bhagwan ki jai, Shri Sata Gurudeva ki jai.
1: गुरु चरणों में अरसत तीरत है।

श्री नारायण भगवान की जय। श्री श्री देव पुरुषा महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ब्लेसेड सेल्फ, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, here in this hall, in our beautiful art.

0: पञ्चाक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमावाप्नोति शिवेन सह मोदते
1: नित्यानन्दकरी वया नित्यानन्दकरी वया भयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी निर्धूताखिलगौरपावनकरी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयाचलवंशपावनकरी।

वन लास्ट वन एंड देन वी स्पीक. करो अपना वाला. हाँ वही है क्या? जय देव जय देव जय दीन शरण्य अनुपम कारुण्य. वो हम लोगों ने तो बनाया था. कौन सा आप ऐसे तो बोला था उसमें सर्च कर लेते आप.

दीप नारायण धर्म परायण, श्री दीप नारायण धर्म परायण, वंदे गुरुपद संस्थानम, वंदे गुरुपद संस्थानम।

0: अजितं गुरुसर्वस्वमिदं स्तोत्रं यः पठेत् हृदये पुमान् गुरुकृपा स प्राप्नोति शाश्वती निर्मला सदा। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सो दिस स्तोत्र इज हैविंग 10 वर्सेस।
1: Ovo štrotra ima 10 stihova.
0: And huge translation, it takes time, so...
1: I potrebno je vremena da se prevede, pa ću to napraviti neki drugi.

अलक पुरीशा महादेव परम सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन।

काली चतुर्भी वो सतगुरु भगवान की जय। पांचीपति विश्वनाथ नित्य प्रति सर्व प्रकार से बड़े उच्च वृत्ति से विशुद्ध वृत्ति से जो उसी ब्रह्म रूप में लिपायमान रहते हैं उन महान सद्गुरुदेव के चरणार विंद में कोटि सत नमस्कार करके ये सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगति मोति सह सो हम स्वाहा। ओम ह्यम हम सो हम स्वाहा। ओम ह्यम हम सह सो हम स्वाहा। सर्वर्दे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व पाप हरे देव कर रहा हूँ वो हमारे सारे मनोरथ को सिद्ध करे। ओम अग्नैर्वाक्मसि यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा। ओम अग्नैर्वाक्मसि यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा। ओम अग्नैर्वाक्मसि यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा। ओम ह्रीं ऐं त्रैलोक्य मोहिनी चामुंडा महादेवी सुरासुर वंदनी ह्रीं ऐं स्वाहा। ओम क्लीं कानेन्दी भेदनाय अग्नैर्वाक्मसि यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा। ओम अग्नैर्वाक्मसि यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा। परानं महाकालकालं कृपानं गुणांगार संसार।

0: परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत सरभूषित महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज, अन्य हमारे सभी संत वृंद एवं प्रिय बंधुओं और स्नेहवती माताओं,
1: आप ट्रांसलेट करो।
2: He's traveling in America, Australia, and everywhere, so I was hoping he will speak in English. So he gave, he greeted all of us who are currently here.
0: Param Pujya, Param Shraddhaya, Ananta Sri Bhushit, Shraddhaya Mahamalleshwar Swami Maheshwarananji Maharaj, jinki pavan kripa se इस आश्रम में, ओम आश्रम जॉर्डन में आप सबका आना हुआ, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो आज चाहे अस्वस्थ हैं लेकिन उनकी जीवन की बहुत बड़ी साधना है जो आज हमें ओम आश्रम के रूप में दिखाई दे रही
2: है। सो आई विल मेक अ शॉर्ट ट्रांसलेशन बिकॉज ईच ऑफ दिस टाइटल्स of which our dear Mahamandaleshwarji is telling for Vishwa Guruji has a long translation. So he says that revered and respected Vishwa Guruji, Paramahansa Swami Maheshwarananji, who created this Om Ashram and who actually enabled all of us to come here in this place.
0: और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी की ये साधना ये तपस्या एक दिन ऐसा रंग लाएगी आने वाले समय में विश्व भर के लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे।
2: एंड ही थिंक्स दैट दिस तपस्या दिस काइंड ऑफ साधना विल ब्रिंग मिलियंस ऑफ पीपल इन द फ्यूचर।
0: हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है।
2: इन इंडियन ट्रेडिशन देयर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु।
0: हमारे भाष्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं,
2: शंकराचार्य जी सेज इन हिज भाष्य इन हिज कमेंटरीज,
0: ईश्वर से भी बढ़कर अगर कोई है तो वो गुरु है।
2: इफ समबडी इज ग्रेटर देन गॉड देन दिस इज गुरु।
0: ईश्वर को हमने किसी ने देखा नहीं है,
2: नोबडी सो गॉड,
0: गुरु जी हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं
2: एंड गुरु इज इन फ्रंट ऑफ अस।
0: हमारे भाष्यकार कहते हैं कि दुनिया में तीन वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं।
2: Our commentators of spiritual texts say there are three very rare things in this world.
0: First, सबसे पहली मानव का जन्म।
2: First is the being born as a human.
0: दूसरा उस परम तत्व की प्राप्ति।
2: Reaching the divine consciousness.
0: और तीसरा महापुरुषों का सत्संग।
2: And third is the satsang with the great saints.
0: हम इस बात को मानते हैं कि मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता।
2: We believe that human life is not available all the time.
0: मनुष्य जीवन में दो विशेषताएं हैं, एक तो हमें परमात्मा ने जैसी बुद्धि दी है मनुष्य को वैसी बुद्धि किसी और प्राणी के पास नहीं है।
2: There are two things important in human form. One is the intellect which no other living beings have.
0: और दूसरा हमें कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है, आज़ादी मिली है, ये केवल मनुष्य को ही कर्म की स्वतंत्रता मिली है।
2: एंड वी आर फ्री टू डू व्हाटएवर थिंग्स व्हाटएवर कर्म्स वी वांट टू डू। सो इंटेलेक्ट एंड कर्म्स आर समथिंग स्पेशली मेड फॉर ह्यूमंस।
0: हमें सबको समय बहुत कम मिला है, इसी समय का हमें सदुपयोग करना है।
2: वी गॉट अ वेरी लिमिटेड टाइम एंड वी हैव टू डू गुड इन दिस टाइम।
0: हमारे यहाँ वेद में कहा है, इह चेद वेदी असत्यमस्ति ना चेद यहा वेदिन महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु वचित्त धीरा प्रेत्य अस्माद् लोकाद् अमृतः भवन्ति। जिसका भावार्थ ये है कि इस मनुष्य जन्म को पाकर उस परम तत्व तक, उस परम सत्य तक पहुँच गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, वरना बहुत

श्रीमद्भागवताख्य धाम बसति राशेश्वर प्रेयसी पंचाध्याय लसत्तनुर्विजयते राशेश्वरी राधिका

0: अब आप ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे एक विद्यार्थी को अपने जीवन में प्राइमरी से लेकर के और एमए तक पढ़ाई करनी होती है, इसी प्रकार की पढ़ाई हमारे अध्यात्म की है, ज्ञान की है।
1: So in the same way, like the teaching starts from the first primary class going all the way to masters and PhD, the similarly the teaching is in adhyatma, in the spirituality.
0: Hamare adhyatm mein, religion mein, dharma mein, primary ki 10 पुस्तकें हैं।
1: In the first class of our in Hindu dharma, in religion and spirituality, there are 10 basic entrance books, primary books.
0: धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दर्शकम ग्रस्त लक्षणम धर्म लक्षणम। पहला है धैर्य,
1: फर्स्ट इज
0: धृति, धृति मानी धारण करना,
1: सो टू टू एंड्यूरेंस।
0: जैसे अभी सिस्टर गा रही थी
1: पेशेंस,
0: कि हमारे साथ विश्व गुरु जी है, हमको कोई समस्या नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, इसी को कहते हैं धीरति, पकड़।
1: So this is like when Vishwa Guruji is with us and we tolerate or we are ready to support or bear everything what is happening around him.
0: Guruji ne jo aapko mantra diya hai, upadesh diya hai, aur apna lakshya bataya hai.
1: So whatever the Vishwa Guruji told, Guruji gave you the mantra, the teachings and all what you have to do,
0: us par pakad rakhna,
1: you have to follow,
0: isko dhirti bolte hain.
1: This is called dhirti.
0: Kshama,
1: endurance, patience.
0: Koi chhota aadmi agar koi galti kar jata hai to bade aadmi ko उसको क्षमा करना चाहिए, जैसे कोई क्षमा भी मांग लेता है, कोई क्षमा कर लेता है। आई एम वेरी सॉरी।
1: सो फर्स्ट वन वॉज पेशेंस, द सेकंड वन इज टू फॉरगिव। सो व्हाटएवर हूएवर डज समथिंग, यू आइदर फॉरगिव टू देम और यू फॉरगिव टू अदर्स।
0: प्राइमरी की शिक्षा में जो वाइफ हस्बैंड है, पति पत्नी है, उनको साथ बैठ करके धर्म और भगवान का चिंतन करना चाहिए।
1: सो इन द फर्स्ट क्लास टू द हस्बैंड एंड वाइफ दे शुड थिंक अबाउट गॉड।
0: धृति क्षमा दमोस्तेयम प्राइमरी में है, किसी भी वस्तु की, पैसे की, अन्न की, धन की चोरी नहीं करना, नहीं करता है तो वो उसमें पास हो रहा है।
1: The third step is do not steal. Whatever money, things or something you have, they should not steal.
0: पवित्रता,
1: purity,
0: पवित्रता बहुत जरूरी है। मैं प्लेन में सफर करता हूँ तो केवल वहाँ ईयर लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि वो लाते हैं, एक्सक्यूज मी, veg, non-veg, veg, non-veg.
1: So purity, like in an aeroplane, I take only water because, or air, because the people are offering veg, non-veg, and all these impure things.
0: वो पवित्र नहीं होता, शोध मैंने शुद्ध नहीं होता.
1: They are not pure, they are not clean.
0: तो धृति क्षमा दमस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रहा. हमको ऐसा खाना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए, जिससे कि हमारा नेचर ऊपर को बढ़े, हम उसमें ऊपर को आवे. ऐसा खान पान आहार व्यवहार हमको रखना चाहिए.
1: सो वी शुड ईट ड्रिंक थिंक लिसन और व्हाटएवर वी डू शुड बी इन अ सच अ वे दैट आवर लाइफ ग्रोस दैट वी आर गोइंग अपवर्ड्स इन द अपर ट्रैजेक्टरी.
0: हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है आपका आहार शुद्ध होगा. आहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा, आहार शुद्ध हो सत्वशुति, तो आप विश्व गुरु जी की कही हुई आध्यात्मिक बातों को संभाल सकोगे, पकड़ सकोगे, कैच कर सकोगे.
1: In Brihadaranyaka Upanishad it says, if your deeds and food is clean, you will understand whatever Vishwa Guruji is trying to teach you.
0: Dhir vidya satyam akrodham dashakam grast lakshanam. Dhir vidya, buddhi, mind, isko buddhi ko सदुपयोग में लाना चाहिए. धी बनी बुद्धि. और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो बुद्धि है, धी बनी बुद्धि है, माइंड, ये जो है ये शुद्ध खाने से पावरफुल हो जाती है.
1: सो आवर इंटेलेक्ट एंड माइंड शुड बी फॉर गुड. It should be pure, and this happens from the food.
0: Vidya,
1: knowledge.
0: Knowledge. जिसको knowledge कहते हैं वो विद्या. विद्या उसको कहते हैं जो आपको सुलझावे, उलझावे नहीं. सा विद्या या विमुक्त ही. जो आपको उलझावे नहीं, सुलझावे. उसका नाम है विद्या.
1: विद्या और नॉलेज इज दैट व्हाट फ्रीज यू, नॉट व्हाट बाइंड्स यू. व्हाट डजंट कवर यू और मेक्स यू बाउंड, व्हाट मेक्स यू फ्री.
0: आप उलझे नहीं हैं, इस बात का प्रमाण ये होता है कि आपको मोह नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, काम नहीं, ईर्ष्या नहीं, ममता नहीं, और संसार के प्रति अट्रैक्शन नहीं आप.
1: So you are pure when you are not having all this attachment to this world, mad, moh, rag, dvesh, and so on, all this.
0: हमारे वेदों में सर्वप्रथम दो बात की शिक्षा दी गई है, सत्यम बदो धर्मम चरो. सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो.
1: In Vedas there are two teachings which are taught on the beginning, tell the truth and follow the dharma, follow your duty.
0: A course aapka primary ka 15 minute mein pura ho gaya.
1: So your the first class of the spirituality is done in this 15 minutes.
0: Ek hi aadmi ke liye, ek hi sadhak ke liye, एक ही शिष्य के लिए, एक ही भक्ति के लिए फाउंडेशन में प्राइमरी बहुत जरूरी है. जो उसके घर से साधना शुरू होती है.
1: So for any sadhaka, any bhakta, any disciple, for any human being, all these primary things are necessary as a base.
0: उसके बाद में उसी साधक के लिए रास्ते अलग अलग नहीं है कि योग अलग है ज्ञान अलग है भक्ति अलग है ऐसा अलग नहीं है एक ही रोड के अलग अलग नाम
1: So there is only one road with the different names. Somebody is calling yoga, somebody is calling jnana, somebody is calling this or that. There are no different roads.
0: Bombay Surat Road, primary. Surat, Baroda, middle. Baroda, Ratlam, high. Ratlam,
2: He's telling the map of India.
0: एक ही रोड के जैसे बम्बई से सूरत बम्बई सूरत रोड नाम हो गया और जब सूरत पहुंचते हैं तो वहां से सूरत बड़ौदा रोड हो जाता
1: सो लाइक व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम बम्बई गोइंग टू सूरत दिस इज कॉल्ड बम्बई सूरत रोड व्हेन यू क्रॉस सूरत इज कॉल्ड सूरत Baroda Road, and then afterwards continue. So in the same way, all the spiritual paths are basically going to the same direction.
0: Middle ka arth hota hai yog marg. Jis marg ka naam, jitna ka marg ka naam yog hai, usko yog bolte.
1: The middle school is yog.
0: Yog mein aapke liye 8 pustak hai, jinko aapko dhyan de karke पढ़ के पास होना
1: सो इन द योगा देयर आर 8 बुक्स इन विच यू हैव टू स्टडी एंड देन पास
0: यम नियम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि पुस्तक यम यम का अर्थ होता है अपने को यमयति नियमयति दंडयति स्वान अपने को नियमित करना उस पुस्तक का नाम है नियम
1: द बुक विच टेल्स अस हाउ टू कंट्रोल आवरसेल्व्स इज कॉल्ड नियम
0: नियम यम अपने को रोकना
1: यम इज द बुक विच टेल्स अस हाउ टू स्टॉप आवरसेल्व्स
0: का अर्थ होता है जो योगा के लिए कहा हुआ योगश्चित्त वृत्ति निरोधा वो नियम हो गया
1: सो नियम इज दिस फर्स्ट लाइन दैट व्हेन योर थिंकिंग स्टॉप्स व्हेन योर
0: नियम मींस कानून को पास पालन करना उसको धारण करना उसको अपने जीवन में लागू करना
1: टू फॉलो द लॉज एंड रूल्स टू पुट इट इन योर लाइफ दिस इज कॉल्ड नियम
0: यम नियम के बाद में आसन है
1: After that is
0: बॉडी को सेट करना बॉडी में जो पॉइंट है उन पॉइंटों को हाईलाइट करना और उसके साथ साथ में जो है जिसको प्राणायाम बोलते हैं हमारी बॉडी ईयर से चल रही है उस ईयर को शुद्ध रखना इसका नाम है प्राणायाम और जो शरीर है उस बॉडी को फिट रखना यह है आसन
1: सो द थर्ड बुक आसन टेल्स अस हाउ टू कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हाउ टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड सो ऑन And the fourth book about pranayama is how to control the air and use it for the purification.
0: Asan se aapki body shuddh hoti hai. Aur isi prakar se pranayam se aapke andar 5 ear hai. Wo 5 ear shuddh hoke aur theek se delivery service karti hai aapki body ke liye सामान की मटेरियल की सामान की
1: सो लाइक द आसनास प्यूरिफाई द बॉडी मेक इट क्लीन द सेम वे द प्राणायाम डज फॉर ऑल दिस फाइव प्राणास फाइव टाइप्स ऑफ एयर which then service our body properly.
0: उसके बाद में प्रत्याहार आता. प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है salt and sweet. समझ गए? प्रत्याहार माने अपने अंदर चिंतन करना और बाहर से कॉन्टेक्ट सब खत्म करना, इसको प्रत्याहार बोलते हैं.
1: सो प्रत्याहार इज टू विथड्रॉ वन सेल्फ फ्रॉम आउटसाइड एंड मेक वन सेल्फ इनसाइड.
0: अभी हमारे अध्यात्म में इंडिया में लोग योगा का बहुत प्रचार करते हैं और दो ही बात बताते हैं, आसन और प्राणायाम. फाउंडेशन में जो यम नियम है वो नहीं बताते, दो ही बात बताते हैं, आसन प्राणायाम. फिजिकली बॉडी के लिए बहुत सरल होता है.
1: सो नाउडेज इन द वर्ल्ड इट्स वेरी फेमस द योगा, इट्स ओनली मेंशनिंग जस्ट आसनास एंड प्राणायामस, व्हाट इज गुड फॉर द बॉडी. But yama and yama, the rules of outer and inner behavior that nobody tells.
0: आसन प्राणायाम के बाद प्रत्याहार होना चाहिए, लेकिन आज के योगी जो है व्यापार शुरू कर देते.
1: So after the asana and pranayama, pratyahara should come, but people started business before pratyahara.
0: ये मेरा toothpaste है, ये मेरा ब्रश है, ये मेरी वैसलीन है, ये मेरे स्किन क्रीम माई.
1: So this is my toothpaste, this is my skin cleaner.
0: ये मेरा चमनप्रास है, ये मेरा ग्लूकोज है, ये मेरा वो है. तो प्रत्याहार जहाँ शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए था, वहाँ पर व्यापार हो गया, व्यवहार हो गया, विस्तार हो गया.
1: So
0: इसलिए वो योगा के लिए अच्छा नहीं है.
1: So instead of pratyahara, which means coming inside, is vyapar, which means expand, so this is not good for yoga.
0: हमारा चेला है वो, इनको पता है सबको. तो उसमें ये है, अब इसके बाद में होता है धारणा. धारणा जो स्वयं का जजमेंट है, स्वयं की स्वीकृति है, स्वयं का निर्णय है, स्वयं की कैपेसिटी है और स्वयं की घोषणा है, उसको धारणा बोलते हैं.
1: सो धारणा इज द नेक्स्ट बुक, फिफ्थ बुक, विच सेज अबाउट इट्स आवर ओन कैपेसिटी, आवर ओन ओन कैपेबिलिटी एंड सो ऑन.
0: अभी आप देख लीजिए धारणा किसको बोलते हैं. ये मेरा संगीत वाला है. धारणा किसको बोलते हैं, ये मेरा संगीत वाला. ओ भाई,
1: सो यू लुक
0: संन्यास लेगा,
1: मींस धारणा
0: नहीं लेगा. नो धारणा,
1: धारणा मींस एक्चुअली आल्सो कंसंट्रेशन. सो यू लुक एट माय द ढोलक पर्सन इफ ही वांट्स टू हैव संन्यासा, सो ही सेड नो थैंक यू.
0: हमको एक व्यक्ति ने कहा, आपने अच्छा किया, आपने अपनी 21 पीढ़ी पार कर ली, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत महान हैं.
1: Somebody told me, you are a great person, you cleaned and purified and you cross over 21 of your family lineage, all 21 generations crossed over this samsara, you are a great person.
0: हमने अपनी चादर उसके गले में डाली, तुम भी अपनी परंपरा को, पीढ़ी को पार करो. So, तुम भी संन्यास ले लो. उसने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नो नो नो नो नो.
1: So then I said okay, I took my shawl and I put around that person's neck and said okay, now you become a sannyasi, you also take your 21 generations across this world. I said no, thank you so much.
0: तो इसका मतलब है कि वो धारणा में नहीं है, उसकी धारणा अच्छी नहीं है, उसका लाइफ जजमेंट या लाइफ जो उसकी प्राप्ति है वो पूरी नहीं है.
1: सो डिजायर्स इन दिस लाइफ दे आर नॉट फुलफिल फॉर दिस पर्सन एंड हिज कंसंट्रेशन टुवर्ड्स गॉड डेडिकेशन इज नॉट देयर.
0: ध्यान, इसके बाद में ध्यान आता है. ध्यान में जो है ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए.
1: बिफोर मेडिटेशन यू नीड सम नॉलेज.
0: एक जो है वो ध्यान बिजनेस बन गया है.
1: एंड दिस नॉलेज बिकेम नाउ बिजनेस.
0: आप वहाँ गए थोड़ी देर आपको घंटा दो घंटा बैठाया और बड़ी बड़ी बातें की तो वो एक बिजनेस है. लेकिन ध्यान का ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए.
1: सो लाइक दिस नाउ दिस मेडिटेशन क्लासेस एंड सो ऑन दे आर देयर जस्ट टू मेक इट्स लाइक अ टाइप ऑफ बिजनेस बट बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट विद मेडिटेशन यू हैव टू हैव सम नॉलेज.
0: अच्छा ये बताइए मैंने आपको आपको देना है मनी तो मनी 10 रुपए लोगे कि 50 लोगे कि 100 लोगे कि 500 लोग 500 का नोट लोगे कौन सा लोगे. जब मैं कहूँगा कि मेरे से मनी ले लो मनी रखा है तो कौन सा नोट लोगे.
1: सो इफ आई टेल यू प्लीज टेक द मनी फ्रॉम मी एंड देन आई गिव यू 5, 10, 20, 50, 100 or 500 rupees विच वन यू विल टेक.
0: अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इतने में से कौन सा नोट लेंगे आप.
1: फ्रॉम ऑल ऑफ
0: 500 का ना 500 का.
1: फ्रॉम ऑल ऑफ दिस यू विल टेक
0: 500 का ठीक है ना.
2: 2000 का
0: बंद कर दिया मोदी ने यार. 2000 दे दे 200 का नहीं. कैसी बात कर रहा है. अगर हम आपको दे रहे हैं तो 500 का लेगा ना आदमी. नहीं लेगा क्या.
1: So if I give you 500 rupees, you will take 500 rupees, you will take less.
0: सभी अभी शर्मा रहे हैं लेकिन जब मौका मिलेगा तो.
1: Now we are like
0: again hand. Yes.
1: Now we are a little bit ashamed, but when the opportunity comes, we will definitely take 500 rupees.
0: ध्यान उसी का होता है जिसकी कीमत आपके दृष्टि में ज्यादा होती.
1: So you can do dhyan, dhyan which when you value something really much.
0: Yam labdhva cha param lavam manyate nadhikam tatah yasmin stobi dukhena guruna na vichalayit. To jiski aapki drishti mein mahima hoti hai, kimat hoti hai, mahatva hota hai, usi ko aadmi yaad karta hai.
1: So whatever is valuable in your eyes, whatever you think is good, whatever you think is best, that actually you concentrate on.
0: आपका आपके जीवन में आपके बीवी बच्चे परिवार का महत्व है. अगर आप दो घंटा ध्यान केंद्र में रहोगे भी और वो आपको कुछ बताएगा भी तो थोड़ी देर में वहाँ से बाहर आने के बाद आपका ध्यान अपने बीवी बच्चों की तरफ जाएगा क्योंकि उनका महत्व आपकी लाइफ में ज्यादा है.
1: लाइक इफ यू हैव चिल्ड्रन वाइफ और हस्बैंड एंड देन यू गो फॉर मेडिटेशन इवन इन दिस आफ्टर द मेडिटेशन यू विल कंटिन्यू थिंकिंग और ड्यूरिंग द मेडिटेशन विल कंटिन्यू थिंकिंग ऑन देम बिकॉज दे आर समथिंग वैल्यूएबल इन योर लाइफ. यू
0: मनुष्य के जीवन में परिवार होता है संसार होता है लेकिन मनुष्य का ज्यादा ध्यान गोल्ड पे होता है.
1: देयर इज अ फैमिली
0: क्योंकि गोल्ड कीमती होता है महत्व का होता है उपयोगी होता है.
1: द फॉर एनी ह्यूमन द लाइफ द फैमिली एंड द संसार दिस वर्ल्ड इज वैल्यूएबल बट द गोल्ड इज मोस्ट वैल्यूएबल.
0: इसी प्रकार से जो है समाधि आती है. समाधि हमारी किसी सृष्टि के सिस्टर का नाम भी समाधि था.
2: दिल्ली में
0: हाँ दिल्ली में समाधि सिस्टर है. समाधि का अर्थ होता है कि ना आप संसार में हैं ना आप शरीर में आपका कोई कॉन्टैक्ट है. अट्रैक्शन कॉन्टैक्ट वहाँ कहीं पर नहीं है. केवल ओनली आपका अपने पर ध्यान है उसको समाधि बोलते.
1: समाधि इज वेन यू फील ओनली योर सेल्फ. देर इज नो कनेक्शन विद योर बॉडी. देर इज नो कनेक्शन विद दिस वर्ल्ड. यू हैव कनेक्शन ओनली विद योर सेल्फ.
0: हमारे विश्व गुरु जी के ध्यान में ध्यान शिक्षण में दो प्रकार की समाधि होती है, एक सविकल्प एक निर्विकल्प.
1: There are two types of samadhis, sarvikalp and nirvikalp.
0: सविकल्प समाधि उसको कहते हैं जहां पर साधक पक्का है और उसको ऊपर उठाने का साधन भी सच्चा है और जहां की उसका गॉड जो उसको पाना है वो भी उसकी समझ में है, इसको बोलते हैं सविकल्प समाधि.
1: So the Savikalp Samadhi is when there is a God who he understands and there is his desires, what he wants, so with some desire or with some aim.
0: इसके बाद में निर्विकल्प समाधि है जहां पर न तो शिष्य रहता है न गुरु रहता है, ये दोनों गॉड में मिलकर के गॉड हो जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि.
1: So in Nirvikalpa there is neither disciple, there is no guru, they both merge into the God, aham brahmasmi, I am Brahma.
0: ये हो गई अब 12वीं क्लास की, 16वीं क्लास तक भाग तो नहीं जाओगे.
1: So this is 12th class.
0: अब 12वीं क्लास क्या है? भक्ति, जिसको हम भक्ति कहते हैं.
1: So 12th class is भक्ति.
0: भक्ति में, भक्ति के कोर्स में 9 पुस्तकें हैं, 9.
1: In the course of bhakti there are 9 books.
0: 9 पुस्तकें. बात सुनना तो केवल विश्व गुरु जी की सुनना, बाकी को सबको इग्नोर कर लेना, नहीं हमने सुनना चाहते.
1: So first
0: श्रवण भक्ति.
1: So first is listening, so listen only what Vishwa Guruji says, nothing else.
0: अंदर से याद करो तो only Vishwa Guruji को याद करो, दूसरे को याद नहीं करो, ये कीर्तन है.
1: Kirtan or remembering is that you remember only the verse of Vishwa Guruji, nothing else.
0: याद करो तो एकमात्र गुरु और गोविंद को याद करो, दूसरे को नहीं, ये स्मरण भक्ति है.
1: Remembering the smaran bhakti is when you remember only God and Guru, nothing else. There is nothing except God and Guru.
0: Surrender. चरणों में झुक जाना, चरणों में समर्पित हो जाना, चरणों में आश्रय पाना, ये पाद सेवा भक्ति है.
1: So these are the different ways how to surrender yourself to the lotus feet of Master.
0: पूजा सब पूज्य समझो तो गुरु गोविंद को, पूजा करो तो गुरु गोविंद की, दूसरे की किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उससे मनुष्य को भटकने की संभावना होती है.
1: So if you do some puja, if you do some ceremony, do the ceremony for God and Guru. If you follow somebody, follow Guru and God, because otherwise you can get lost.
0: अपनी आवश्यकता और गुरु गोविंद का महत्व समझ करके जब वंदना की जाती है, स्तुति है, वंदना है, वंदन है, उसको वंदना भक्ति बोलते
1: हैं. When we start glorifying the importance of Guru and God, then this is called vandana. This next
0: दास्य, सेवक, शिष्य, उसको दास्य भक्ति कहा गया है.
1: Next one is serving, to serve the Guru and God.
0: दास, अपना अस्तित्व, अपना महत्व, अपना अहम आकार प्रकार स्वरूप मिटा करके गुरु में समाहित हो जाना उनकी सेवा में, उसको दास बोलते हैं.
1: दास और सर्वेंट इज व्हेन यू रिनाउंस ऑल ऑफ योर आई और ऑफ योर इगोइज्म एंड देन यू डेडिकेट योर लाइफ टू द सर्विस ऑफ द गुरु.
0: जब आपका मन शुद्ध हो जाता है और गुरु गोविंद को विश्वास हो जाता है तो उस समय पर गॉड, भगवान, गुरु आपको अपना मानते हैं और आपके साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं उसको सखा भक्ति बोलते हैं.
1: Sakha bhakti is the next step, is when you believe and trust your guru so much that he also can become like your friend.
0: हमारे सनातन धर्म वैदिक मार्ग भक्ति मार्ग में धीरे धीरे धीरे धीरे अर्जुन जब कृष्ण के नज़दीक गए तो भगवान ने उनको फिर दास नहीं रहने दिया, सेवक नहीं रहने दिया, उनको सखा बना दिया. सखा मित्र.
1: So like friend. When Arjun was with Krishna, he didn't, after some time, he stopped being his servant, he stopped being his sevak, he became his friend.
0: इसके बाद में आत्मनिवेदन भक्ति आती है. बोलो महाराज जी, अब मैं आपके साथ ही कल सुबेरे चला चलूँ. चलो इसकी तरफ से मैंने बोल दिया. कहते आत्मनिवेदन.
1: आत्मनिवेदन इज व्हेन यू से आई एम गोइंग विद यू टुमारो मॉर्निंग, आई विल गो विद यू व्हेरेवर यू वांट.
0: वो आत्मनिवेदन है. आत्मनि हमारा ये निवेदन है कि हम आपके यहाँ एडमिशन चाहते हैं, एंट्री चाहते हैं, और अब हम उसी कंडीशन में रहना चाहते हैं जिस कंडीशन में हमारे गोविंद रहते हैं, गॉड रहते हैं.
1: सो इट्स रिक्वेस्ट ऑफ द सोल दैट आई वांट टू लिव इन दैट कंडीशन, आई वांट टू लिव इन सच अ वे लाइक अ गॉड इज लिविंग.
0: इसके बाद में फाइनल एमए की परीक्षा होती है एक ही आदमी के लिए. वो क्या है? ज्ञान की भूमिका.
1: So the MA, the master degree, is the index of knowledge. It's the last one, or introduction to knowledge.
0: उसमें सात पुस्तकें हैं. उसमें सात पुस्तकें विद्यमान की गई.
1: Seven books.
0: उसमें पहली books क्या है? सुविच्छा. क्या है भैया? सुविच्छा. सुविच्छा क्या है? बोलो गुरुजी. अब मैं आपके पास ही रहूंगा, रह लेना हम कहाँ मना.
1: फर्स्ट बुक इज स्वइच्छा और द ओन डिजायर एंड यू से गुरुदेव आई वांट टू लिव विद यू.
0: अच्छा अब आपको तो हम एक मीडिया बना रहे हैं. अच्छा अब बोलो गुरुजी.
1: बोलो
0: मेरे विचार आपके विचारों से मिल रहे, ले ले संन्यास.
1: The second one is, oh Guruji, I think the same like you, and Guruji says, okay, then take sannyasa.
0: जब साधक शिष्य का विचार गुरु से मिलता है उसको कहते हैं विचारणा. उसको क्या बोलते हैं?
1: विचारणा.
0: उसको विचारणा बोलते हैं.
1: विचारणा मींस थिंकिंग. इट्स लाइक व्हेन योर थॉट्स एंड गुरुज थॉट्स आर इक्वल, योर थिंकिंग लाइक योर गुरु.
0: तन मानसा. इसके बाद में जो है पुस्तक है तन मानसा. गुरु से जब विचार मिलता है तो जैसे बड़ी टंकी में से पाइप में से पानी आकर घर की छोटी टंकी में आने लगता है, ऐसे ही गुरु का ज्ञान शिष्य में आने लगता है. इसलिए उसको तन मानसा बोलते हैं, यानी कनेक्शन, बड़ी टंकी से छोटी टंकी में कनेक्शन.
1: सो द नेक्स्ट वन इज तन मानसा. व्हेन द गुरु, द नॉलेज ऑफ द गुरु स्लोली स्टार्ट्स टू बी ट्रांसफर टू द स्मॉल पोर्शन ऑफ शिष्य ऑफ डिसाइपल.
0: सत्वापत्ति. अब चतुर्थी जो है ज्ञान भूमि सुविच्छा स्यात्, प्रथमा समुदायता विचारणा, द्वितीय स्यात् तृतीया तनुमानुसा, सत्वापत्ति चतुर्थी स्यात्, पंचमा संस्यात्मका, पदार्थ भावनी षष्ठी, सप्तमी त्रियगास्मृतम. तो चौथी जो भूमिका है, चौथी पुस्तक है, उसके कारण गुरु में और शिष्य में जो है एकता, एक आकार, एक अभिव्यक्ति और एक विचारधारा बन जाती, उसको सत्वापत्ति बोलते।
1: सत्वापत्ति इज द नेक्स्ट स्टेप व्हेन इन गुरु एंड डिसाइपल देयर इज नो डिफरेंस इन देयर थिंकिंग एंड एवरीथिंग।
0: पदार्थाभावनी कहते हैं, पदार्थाभावनी, जैसे आपको चाय याद ही नहीं आवे, कॉफी याद ही नहीं आवे, चटनी याद ही नहीं आवे, रसगुल्ला याद ही नहीं आवे, आइसक्रीम, फिर 15-15 इंजेक्शन।
1: सो द नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन यू इवन डोंट रिमेम्बर, यू नो, नाइदर एनी स्वीट्स और एनीथिंग, एनी फूड यू लाइक, देयर इज नथिंग देयर।
0: पदार्थाभावनी का अर्थ यह है कि आपके सामने स्टोन हो और आपके पास में जो है गोल्ड हो, इस दोनों को आप बराबर समझे, इसको पदार्थाभावनी बोलते हैं।
1: पदार्थ अभाव, the detachment from the anything is like you can have a stone or you can have a gold, for you this is equal.
0: नहीं, पहले असंशक्ति। असंशक्ति ये है, असंशक्ति इसको कहते हैं कि कभी कोई रिलेशन में आपके मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, वाइफ हैं, चिल्ड्रेन हैं, कोई भी है, इनमें आप गुरु को छोड़कर इनमें आपके मन का नहीं जाना, उसको बोलते हैं असंशक्ति।
1: असंशक्ति इज व्हेन यू डोंट थिंक एंड देन यू गो बैक टू योर फैमिली, टू योर ब्रदर्स, सिस्टर्स, वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन।
0: अब तो हमारा एक ही नारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा।
1: There is only one thing I know, there is nobody of mine and I am nobody's.
0: Padarthabhavani, jahan sona, mitti barabar lage, koi bhi upalabdhi, koi bhi prapti, sansar sambandhi, jo apne ko prabhavit nahi karti ho, usko shastra ne asanshakti kaha.
1: So only after you get detached for your family and so on, you can come to this detachment from the things from this world, like gold and all these things.
0: हमारे भागवत में श्रृंगी ने साफ दिया था, परीक्षित को तक्षक काटेगा, और लास्ट में तक्षक आया फणा उठा करके, लेकिन परीक्षित डरा नहीं। आप डरोगे जब कोई आएगा, ईयर वो क्या ना बोलते उसको,
1: सांप, सांप, स्नेक,
0: स्नेक, वो आएगा तो आप बैठे रहोगे कि

0: भाग जाओगे।
1: So like in the in Bhagavata there is this curse of king.
0: इसको पदार्था भाव नहीं बोलते हैं कि किसी से भी हमको खतरा महसूस न हो, डरने लगे। और कृष्ण भगवान ने कहा नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नचैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मार्ग। आपको शस्त्र नहीं काट सकता, पवन नहीं उड़ा सकता, पानी आपको जो है भिगा नहीं सकता है, हवा आपको उड़ा नहीं सकती है। ऐसा आपका स्वरूप है, उसमें स्थित होने का नाम है पदार्थाभावनी। उन पदार्थों का आप पर कोई प्रभाव नहीं, उसको पदार्थाभावनी बोलते हैं।
1: So this is that book Padarthabhav. There is no fear of snakes, there is no fear of death, there is no fear that the fire will burn you, you will drown in the water, that anything will happen with any element. So this is the highest form.
0: Turiya avastha usko kehte hain jab aapke charon taraf samagri padi ho, vastu padi ho, sab kuch jitna bhi sansar mein wo pada hua ho, और आपकी उसके प्रति कोई आप में कोई अट्रैक्शन या कोई वृत्ति या कोई वर्क आप उसमें नहीं करते हो तो उसको तुरिया अवस्था बोलते हैं।
1: एंड देन आफ्टरवर्ड्स इज तुरिया अवस्था द प्लेस और द माइंड स्टेट व्हेन यू हैव एनीथिंग अराउंड यू एंड देन यू डोंट वांट टू डू एनी वर्क इन दैट इट डजंट अट्रैक्ट।
0: इस प्रकार से जिसने स्टार्ट किया गुरु जी से, इस प्रकार से उस व्यक्ति को सारी क्लासें और सारी पुस्तकें तैयार करके लाइफ में पास होना चाहिए और गुरु गोविंद को प्रसन्न करना चाहिए, गुरु गोविंद को विश्वास में लाना चाहिए और गुरु गोविंद को ये एहसास कराना चाहिए कि आपने जो हमारे साथ मेहनत की, वर्क की, वो हमने सफल कर दिया।
1: सो इन आवर लाइफ्स From the starting point, we have to pass all these tests and we have to convince the Guru and the God that we did, and then whatever you invented in us, whatever you effort you put in us, it was successful. So we passed all these exams. This Acharyaji is telling to us that we should success, we should successfully pass all Vishwaguruji's tests. Or effort what he gave, we should fulfill all his wishes.
0: Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate Om Shanti Shanti.
1: Chidip Narayan Bhagwan Ki Jai Devadidev Deveshwar Mahadeva Ki Jai Indudaran Samrat Smarav Nanji Bhagwan Ki Jai Rajguru Mahamandaleshwar Acharya Mahamandaleshwar Shokanand Bharatiji Maharaj Ki Jai.